जो समा हुक्म होया सी समय दी समाप्ति है। सतगुरु सबना दियां हाजरियां दर प्रवान करन, एक जकारा वीरां नूं बेनती चढ़दी कला दा ते एक जकारा पैणा नूं करो कृपा सारे।

समूह प्रबंधक साहेबान और गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का जिन्ना शुक्राना करिए थोड़ा है, डॉक्टर गुरनाम सिंह, वीर गुरप्रीत सिंह, वीर राजविंदर सिंह जी उस्ताद जी और भाई निर्मल सिंह जी जिन्हों के उदम सदका समूह प्रबंधक साहेबाना का सदका अपना सारे ने कि जो महाराज की बाणी सारी रागों में गाई है, निरोल रागों में गा के हाजरी भरी है। आओ हुण समाप्ति है, सलोक पढ़ांगे नाल ही अरदास विच आपां जुड़ांगे। सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुई दाई दाया खेलै सगल जगत।

मन सुरग माशु पयाले गावन तुद नौ रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावन तुद नो जोद महाबल सूरा गावन तुद नो खाणी चारे गावन तुद नो खांड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सेई तुद नो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुद नो गावन से मैं चित न आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा साचो साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावै।

रहाउ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कहण न जाई तेरी तिल वड्याई।

चारा, जिस तू देहे तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला

दास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाओ हर जन के वडपाग वडेरे जिन हर हर शरदा हर प्यास हर हर नाम मिले त्रिपतासह मिल संगत।

जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा।

सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पाओ करया। उडे उड आवे सै कुसा तिस पछे बचरे शरया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करया। सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल तरया। जन नानक

जन नानक तिन कुर्बाना। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जन जुग मैं सुखवासी। से मुकत पाए जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी, तिन का भउ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करै हर पूजा जी, तप तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी, कर किरिया खटका।

મેંડા સાઈ, જો તવ પાવે સોઈ થીસી, જો તું દેહ સોઈ હો પાઈ રહાઉ। सब तेरी तू सबने त्याया, जिसनो कृपा करे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया।

नावक तिन है किया। पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले। मन एक न चेतस मूड़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगधा जन्म भया। प्रणवत नानक

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरे करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। पव चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावो, आप हाथ दै मोहे बचाव। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन को आज संघरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम है शाड कोई अवर ना त्याऊ, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है।

श्री अस तुज जीव करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे रखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विषण प्रकाश।

कार काची नत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पेन पेन तो है तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत पूज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा। सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दोष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जवन

मैं पाया। ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गलां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारू, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा।

तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका हुए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर तारो तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो सलोक महला पंजवां

सत्संग जी बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाहिगुरु अधिपाशी दसवीं प्रथम भगवती समर क्या है गुरु नानक लेते आए फिर अगत करते अमरदास रामदास हुए सहाय अर्जुन हर बिंदु सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण की आई थे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर है कारण उन्हें दिया वह सहाय सब ताई हुए सहाय दस में पाचिया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब ताई हुए सहाय दसा पाची ने पितरात्मक रूप शायद श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पारदास दाते अंतर के घर सत बोलो जी वाहे गुरु। गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चार ही मुक्त हटियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वंड छकिया दे चलाई ते वाहि देख निड कीता तेना प्यार प्यारे नहीं कमाई दते अंदर के बोलो जी वाहे गुरु। जिन्ना सिंह सिंघनिया धर्म है सी दिते बंद बंद कटवाए कोपरिया लुआईया चरखड़िया ने चढ़े आरे न चढ़ाए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां की धर्म नहीं आ रहा सिखी थे कैसा सत्संग निभाया तेना नहीं कमाई दते अंदर के बोलो जी वाहे गुरु। पंजा तख्त गुरुद्वारे दते अंदर के बोलो जी वाहिगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम चेताव है चित आवन का सद का सर्व सुख है जहां जहां गुरु खालसा साहब का हरचर्या है देव देव की फतेह वृद्ध की पैज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बल्ले बोलो जी वाहिगुरु। सिखानु सिखी दान के दान रहत दान विवेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि यहां चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पद के राखे आप वाहे गुरु। गुरु जी मनु आज पंच सदा से आज दयाल जी गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब दूर गुरुद्वारे गुरु धाम जी ने तो आप जी पंथ नूं छोड़िया गया है उन्हें खुले दर्शन निराश से सेवा समाज दा खालसा जी ने बख्शो ये ओटिया की ओट गुरु न्यासरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ दार दोए कर जोड़ करो अरदास तुझ भावे ताने रास एक जी आज जी आपके चरण कामना जनरास जी साहब जी ने बख्शिश की है अध चरना पितृ गुरबाणी सुखमणी साहब संभूर पाठ दिता ऐस में सिंध ऐसा जान के आपके चरना सोधर राज साहब ने पाठ किया कृपा करो भूइया भुला चुका की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोच के सचखंड प्रमाण करो बाणी का भाव सारिया संगतान की हिरदय निशानी की वादा करो जी अगो तो शोध से मित्र बाणी चाणी मन बुद्धि बख्शिश करो आज इस खुशी में आप जी बख्शियां दाता मित्र आप शादी देगा तैयार करें हाजर ने उतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सात संघ की रचना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पित्र नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखा क्लेशा रोगों का नाश करो सुखों का प्रकाश करो देव प्रदेश रखा बख्शिश करो जी ये दतार जी आपके बख्शिया दाता जो नगर चुट सेवा प्रवान करनी आज आपके चरणा सेवा कर रहे सारे टहरी है सिंह सिंघनियां तंदुरुस्ती बख्शो चाटिकल बख्शो अरे सदा ही इसे तरह अपने चरणा सेवा दी भान बख्शो वार्ता करो गरीब नवाज अमृत वेद लैके दाते आइए सात संगत दर प्रवान करो घड़िया लेके लाओ संगतों का दर से तिर फुर पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी की मैं कृपा कर दिता अजय दर का सेवादार बिरुचि गाढ़ा परिवार की तंदुर सुख शांति चढ़ कला वास्ते बेनती करते हैं फिर तुम्हारे घर द्वार प्रवान करो बख्श करते भी बिरुचि करो सारे परिवार तंदुरुस्ती सुख शांति चढ़ कला करो परिवार में एकता स्वाद प्यार की बख्शे करके सतार बखार सेब कहीं कमाइया सफल करो कार्य वादे बख्शो आप दर्ता राजपत रखो जी दियो कृपा करो सेब कौम खालसा मंत्र एकता स्वाग प्यार की बख्शी करके सतोज दाज बख्शो चाना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शो हर मैदान दीवान फतेह बख्शा की वार्ता करो जी दार दूर दराज कार बैठिया शर्म कर रही सारी घड़िया लिख के लाओ उतारा उन्हें बख्शी नहीं सकते उन्होंने बख्शे सकते आदि चरण धनबाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद माया ऑनलाइन गुरु घर गुरु घर सेवा सिंह दर सकता माया पेटा चरण प्रवान करो बख्शा सब कमाइया सबल करो वाद्य बचो सब सकता दिन शुभकामना सरबंध पूरिया करो जी मेहनत करो सेवा प्रवान करो पुनः तुका माही बख्शो बेहतर गुना बख्श करे प्रण आज शाम ने कथा की बारे हम तावा से आगा बख्शो रहते कार सुहार के चरण प्रवाद बनाओ सही प्यारे बिनो जिन्हें मैं आपका नाम देता हुआ नानक नाम चल दी करा तेरे पाने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा आज्ञा भई अकाल के तभी चलायू
ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮੰਗਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਣਾਂ ਕੀਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ

महाराज दा जदों नाम लईए कोशिश करिए दुनिया नालों नाता ही टुट जाए। जदों निरंकार की याद बने भावें 5 मिनट लई भावें 10 मिंट लई कहिंदे संसार याद ना आए। कबीर साहब ने ऐसा पल्ला फड़िया, ऐसे भेद हो गए, पता ही नहीं लगता भी कबीर राम है कि राम कबीर है, रब कबीर है कि कबीर रब है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक पए कोई ना सके पछानी। साडे वर्गियां दा यह हाल है, तन बैठा है मन किते होर ही तुरिया फिरदा है। तन इधर उधर हो जाए पर मन दा जिहड़ा पंछी है ना वो जरूर हाजिर हो। इसे नूं सतगुरां ने शायद आख्या मन विच है सतगुर के पास ते सेवक के जिस कारज विच मन ही हाजिर ना होवे वो कारज कई वारी बेरसा बन जाता है। दुनियावी कारोबार करदे जे ध्यान होवे ने ना ते बंदे नूं सट्टां लग जांदियां ने।

ठोकर लग जाती है। तू बेध्याना होके तुरिया फिरदा सी। सतगुरु कह रहे ने ध्यान सुप्रीम पावर है और दूजे श्वास इस तो वड्डी पावर दुनिया च तेरे कोल कोई नहीं। एक श्वास एक ध्यान, ध्यान चंगे पासे लाएगा ते चंगे ही दरवाजे खुलते जाणगे, ध्यान माड़े पासे लाएगा माड़ी संगत विच ते माड़े दरवाजे खुलते जाणगे। सतगुरु कह रहे ने जे तू ध्यान मेरे वल लाए ना तेरा सुभाव मेरे वर्गा ही बन जाए, तेरे विचों भी कबीर दी झलक नजर आएगी। जदों जपेगा फिर संसार ब्रह्मंड विचों हर पास्यों गुरुद्वारा नजर आएगा। ये सारा ब्रह्मंड ही गुरु घर है, गुरुद्वारा है, धरती उस निरंकार। सतगुरु मेरा मन तुसी आपे जोड़ो।

0: समय दिसो मागती है। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन मेहर करन गाव्या सुनिया थाए पा लैन जिथे आपां हाजरी पा रहे हाँ उत्थे पाकिस्तान तो बड़े प्यारे गुरमुख सज्जन जदों पहला दस रहे ने कीर्तन की हाजरी भरी उदों नाल बैठे राहुल सिंह भी नहीं सतगुरां दी ऐसी खेड वरती केसा तारी हो गए गुरु दे कीर्तनीय बन गए। कीर्तन करदे सन पर दस्तार नहीं सी केस नहीं सी सो वह प्यार करते ने आप नाल बैठ के हाजरियां भर रहे ने। वीर राहुल सिंह जी तुहानू जी आया नू महाराज सदाई चढ़दी कला। अगला प्रोग्राम ज्ञानी नवनीत सिंह जी बड़े प्यार नाल आप जी दे नाल गुरमत विचारां दी सांझ पाउणगे। आसीस देओ फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु।

गुरु प्यारे जी, सतगुरां दा बड़ा प्यारा वचन है। मैं इस शब्द नूं पहला भी गाउना, पर उहदी अस्थाई सी संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वड पागी पाए। पर जो केंद्री भाव है वह रहाओ की पंक्ति विच, इस करके मैं रहाओ की जो सतगुरां ने बख्शिश की पंक्ति की, मैं उस नूं आधार बना के स्थाई बना के तुहाडे नाल सांझा कर रहा। संतो, राम नाम निस्तरी है। इत्थे जो संतो शब्द वरत्या है, वैसे तो विशा भाई नवनीत सिंह हुणां दा, मैं बेनती करदा इत्थे ये शब्द जिहड़ा है तुहाडे वास्ते ते मेरे वास्ते भी, ये सतगुरां दी जुबान दा मिठास है। उन्हां मिठे बोलां विच्चों इह वचन निकलिया, तुहानूं ते मैनूं सारिआं नूं गुरु साहिब कहिंदे वी भले लोको। जदों गुरु तेग बहादुर साहिब की बाणी पढ़ी है ना, गुरु तेग बहादुर साहिब करीबन करीबन हर शब्द विच साधो मन का मान त्याग, साधु रचना राम बनाई, साध शब्द वरतदे हन। उस साधुआं नूं, उन्हां नूं भेख वाले साधुआं नूं संबोधन नहीं है, सानू सारिआं नूं है। इह निम्रता उन्हां दा प्यार दा शब्द है, सब नूं कहिंदे वी भले लोको। राम नाम निस्तरीए, राम दा नाम जो रमिया होया राम है उसकी गल है, ओह पार लंघा जांदा है। किवें उठत बैठत, उठदियां बैठदियां मतलब हर काम करदे आ, हर हर ते आईए, हरी हरी आखी जाइए, उसदा आराधना करी जाइए। अन्न दिन दिन रात ये नेक कम करिए, सुकृत का मतलब है नेक कम, नेकी, नेक कमाई, सुकृत एक कृत होंगे ना, किरत मैंने किरत करनी काम करना, यह सुकृत का मतलब है नेक कम करना, परमात्मा की बंदगी करनी है, यह नेक कम है। तो उठद्या बैठद्या हरी हरी वाहगुरु वाहगुरु जो भी थोड़ा आसा है शब्द की करी जाओ, ये भले लोगों का मार्ग है, यही धर्म की तरक्की विच तुहानू पौड़ी का काम करेगा। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, पर नाल सतगुरु यह भी आखते को वड भागी पाए, कोई वड्डे भागों वाला है जिसनों ये अवस्था प्राप्त होंगी। तो मिलजुल के गायन करिए, एक शब्द का मैं गायन करना है, तो थोड़िया जी तुहानू मैं बेनतियां करनिया, वह सुन के जाए जरूर जी, वो पहले वाली ने जिड़िया पहला की नवियां करनियां। आओ पहला तो आप शब्द नाल जुड़ लीए, मन नूं एकाग्र कर।

सगल समग्री तुमरै सूतर तुमते हो सो आज्ञा तुमरे गत मित तुम्हें नानक दास सदा कुर्बानी बोलना जी सतनाम श्री वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वाह श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमरक गुर नानक लई ध्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासी हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नु सिमरों श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याईए जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौन दया वे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी सब थाई होए सहाय दसम पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान रखे बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के डिठ कीता तिना प्यारिया सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान रखे खालसा जी साहिब बोलो जी जिन्हां सिंघा सिंघणियां ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया ना चराए गुरुद्वारा की सेवा ने कुर्बानियां कीतियां धर्म निहारिया सिखी केसा स्वासन संघ निभाई तना की कमाई का ध्यान रखे खालसा जी साहिब बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारा का ध्यान रखे बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चितावे चितावन का सदका सर्ब सुख होए जां जां खालसा जी साहिब तहां तहां रशिया रियायत देखते फतेह बिरद की पाए पंथ की जी श्री साहिब जी साहे खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहे दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशना चौंकिया झंडे बुंगे जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत उचे मत पत का रखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दाता अर्जियो श्री ननकाणा साहब ते होर गुरुद्वारियां गुरुधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो इन माण्यो के मां नितान्यो के तां न्योटियां ते ओट सच्चे पिता वाहिगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दोए करजोड़ करो अरदास तुद भावे ता आने रास महाराज जी आप जी के चरणा अरदास बेनती आप जी की महान बख्शिश हुई पावन हजूरी अंदर रात्रि दे दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना विच आरती शब्द कीर्तन चल रही लड़ीवार गुरु शब्द दियां विचारां उपरंत अमृत बाणी दे शब्द कीर्तन होए महाराज जी समुची सेवा निभाउंदिया बाणी पढ़दिया कीर्तन करदिया विचारां करदिया आप जी की सेवा संभाल करदिया होईयां बेअंत फुल्लां बख्श देणियां जी अगे वास्ते समत बख्शिश करनी शुद्ध गुरबाणी गायन करन दा बल तुम बख्शिश करना जी बाणी दा पाप आईयां संगतां दे हिरदिआं ते विसाउणा आईयां संगतां दी हाई तरते प्रवान करनी सभना दीआं तिल फुल पिटावां दर प्रवान करनियां सभना नूं दरों करो नामदान गुरसिखी जीवन बख्शिश करना चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करनी महाराज जी दुखां कलेशां रोगां दा नाश करना जी सुखां दा प्रकाश करना देशां विदेशां विच रख्या बख्शिश करनी महाराज जी बेअंत संगतां दूर दुराडे विच घरां विच लायो गुरबाणी दे जाप सरवण कर रहियां हन जाप सरवण करदिआं आप जी का धन्यवाद करदे हां बेअंत मैं गुरु घर वास्ते गुरु घर दे सेवादार संघां वास्ते ऑनलाइन भेटा कीती महाराज जी सारी संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी सभना दी माया सफली करनी कीर्तक माया दे बरकतां पाउणियां श्रद्धा भावनावां संपूर्ण करनियां जी आप दर घर दे सेव बीबी मनवीर कौर तूर वाहगुरु जी का शुकराना करदिआं गुरु घर वास्ते 101 डालर माया भेटा करदे हन नवी कार लैण ते वाहगुरु जी का शुकराना करदिआं बीबी जसविंदर कौर गुरु घर वास्ते बेअंत माया भेटा करदे हन कृपा करनी सेव परिवारां दी भेटा दर प्रवान करनी परिवार दीआं श्रद्धा भावनां संपूर्ण करनियां चढ़दी कला बख्शिश करनी दर घर दे सेव चैन बलवैंत समूह परिवार वल्लों महाराज जीओ गुरु घर दी नवीं बारी बिल्डिंग वास्ते 2100 डालर भेटा कीते कृपा करनी सेवक परिवारां दी भेटा दर प्रवान करनी परिवार नूं देर हुक्ता तंदुरुस्तियां प्रदान करनियां चढ़दी कला बख्शिश करनी अंग संग उके सहायता करनी दर घर दे सेवक बेटा नितेश सैणी दे जन्मदिन की खुशी विच अते पढ़ाई की सफलता वास्ते परिवार वल्लों आप जी दे चरणां च अरदास बेनती बेटा युतका सैणी
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਬੇਟਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸੈਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਅਗਿਆ ਪਹੀ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾ ਕੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ।

था, चमकंकर नेड़ न आया, सुख नानक शरणी पाया। वाहिगुरु जी का खालसा, सतनाम। वाहिगुरु साहिब जी। सोहेला रागौड़ी दीपकी महला पहला, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जय कर कीरत आखी है, करते का होए विचारो, तित कर गावो सोहेला, सिमरियो सिरजनहारो। तुम गावो मेरे निरभउ का सोहेला, हो वारी जित सोहेले सदा सुख रहा। नित नित जियड़े समालीन, देखेगा देवन हार, तेरे दाने कीमत ना पड़े, किस लाखे कवन सुमार। संबत सह लिखिया, मिलकर पावो तेल, देहो सज्जन सीसरिया, जो होवे साहिब सुमेल। कर कर एहो पहुंचा, सदरे नित पवन, सदन हारा सिमरे नानक से देह अमन गाज। आसा महला पहला, छे कर छे गुरु छे उपदेश, गुरु गुरु एको वेश अनेक। बाबा जय कर करते कीरत होए सो, ढाई पे रख विसे जिसने घड़ियां फेरा। तिथी वारी महुआ सूरज एको रुत अनेक, नानक करते कि तनासी महला पहला। गगन में थार दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो, पवन चवरो करे सगल बनराय। कैसी आरती होए पवखना तेरी, आरती अनहत शब्द वाजन तेरी। सहस्तव नैन नन नैन है तुहे को, सहस मूर्त नन एक तुही, सहस पद सहस्तव गंति चलत मोही। सब मैं जो जो गुरु साखी, जो प्रगट होए जो किस पावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, अनजनो मोहे आही प्यासा, कृपा जल देना अनुसार। होए जाते तेरे नाय वासा, राग गौरी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर बो कर मिल साधु कंडी ठंडा है। पूरब लिखत लिखे पाया, मन हर लिंग मंडल मंडा है, कर साधु मंडली कुल वड्डा है, कर डंडो तुम वड्डा है। राहुल साधक हर साधना जाने, किन मित्र हो मैं कंडा है। पावे जमकाल सह है, हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन मरण पाव खंडा है। अवनासी को पाया परमेश्वर, बहुत सोव खंड प्रह मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे, हर रात रात बंदा है। हर नामे ही सुख मंगा है, राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। करो विनंती सुनो मेरे मीता, संत तहल की बेला, यहाँ खाट चलो हर लाहा। आगे वसन सोयला, आउड कटे दिन सरैना रे, मन गुर मिलका सवारे। एव संसार विकार संसे में, हरे ओ ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पियावे एव रसा तत्त्व ज्ञानी। जाको आए सोई विहार, जो हर गुरु ते मन है बसेरा, निज कर में अल्पाओ सुख सहजे, भोग न हो गो तेरा। अंतर जामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास एह सुख मांगे, मुको कर संतन की पूरे। अंतर जामी पुरख विधाते, नानक दास यह सुख मांगे, मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।

साहिब जी एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लई ध्याय, फिरंगत गुरते अमरदास रामदास होए सहाय, अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस मिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया घर नौ न्यावै धाए, सब थाई होए सहाय, दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय, दसवें पातशाह की जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो जी। हे नमाण्या दे माण सतगुरु, नित्याण्या दे ताण सतगुरु, ने उठ्यां दी ओट, ने पत्त्यां दे पत्त, ने आसरे दे आसरे दात, हर पातशाह जी हजूर सतगुरु, दोए कर जोड़ करो अरदास, तुद भावे त्याणे रास्ते, महावाक अनुसार हजूर आप जी दे चरना कमला विच अरदास, बेनती जोदड़ी है पातशाह जीओ। आप जी ने सतगुरु जी अपार बख्शिश की, मेहर की, अमृत वेले तो लैके ऐस वेले तक संगत नूं खुले दर्शन दारी बख्श के निहाल किया है। संध्या दा टाइम जाण सो दर रह रास, कीर्तन कथा कीर्तन कीर्तन सवेले जी की सच्चे पातशाह जी अरदास, अखरवादा घाटा पुल चुक माफ करने, सुरबत के कार्य रास करने, सही गुरु प्यारे मेल कराने, जिन्हों के मिलन वाला जी का पवित्र सुवास सुवास नाम चिते आवे, नाम बाणी दान शनान सेवा सिमरन की दात बख्शिश करनी, सतगुरु जी इस वक्त आप जी के पवित्र पावन स्वरूपों की सेवा की है, सेवकों को सेवा करद्या तो बाणी पढ़द्या तो कई प्रकार दी गलतियां त्रुटियां भुलां हो जांदियां ने, सो अपने अनजाण बच्चे समझ के माफ करना जीओ, अगे तो शुद्ध ते स्पष्ट सेवा करन दी बाणी पढ़न दी बल बुद्धि उद्दम बख्शिश करना, कृपा करो आप अपने पवित्र पावन सुख आसन ते विराजमान संगत नूं खुशियां बख्शिश करो, अमृत वेले फिर संगत नूं खुले दर्शनदारी बख्श के निहाल करना, जो जी आप जी दर ते आवे सो राजी होके जावे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणी सरबत दा भला। वाहि

आसा, प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिधमाहि समाए, प्रभु जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरै से धनवंते, प्रभु को सिमरै से पतवंते, प्रभु को सिमरै से जन परवान, प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरै से बेमोहतादे, प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरै से सुखवासी, प्रभु को सिमरै सदा विनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला, प्रभु को सिमरै से पर उपकारी, प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी, प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरै तिन अनद कनेरे, प्रभु को सिमरै बसै हर नेरे, संत कृपा ते अंदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभु कै सिमरन कारज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबहु न चूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहज सुमानी, प्रभु कै सिमरन निचले आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन कांत न पार, सिमरै से जन जिनको प्रभु माया, नानक तिन जन सरनी पाया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद उपाए, हर सिमरन पए सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीचों कुंठ जाते, हर सिमरन

निरंकारा कर कृपा जिसिया बुझाया नान गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सुलो दीन दर्द दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ अष्टपदी जय मात पिता सुतमीत न पाई मनुहा नाम तेरे संसाई जय मा प्यान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चलै जय मुश्किल हो वै तुपारी हर को नाम किन माहे उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जप तो है सुखिया लाख करोरी बंधन पर है हर का नाम जपत निष्ठर है अनिक माया रंग तिक न बुझावे हर का नाम जपत आघावे यह मार्ग जात के लात है हर नाम संग हो सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याई है नानक गुरमुख परम गत पाई है छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जप तह पार पराही अनिक बिगन जय आय सुंगार है हर का नाम तत्काल उदार है अनक जोन जन मैं मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हो मैला मल कबू न तू वै हर का नाम कूट पाव खूवै ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाई है साध कै संग जे मार के गन जाहे न कोसा हर का नाम हां संग तोसा जे पै डै मान दुबारा हर का नाम संग उजियारा जा पंथ तेरा को न सियानू हर का नाम तै नाल पछानू जय मा भ्यान तप्त काम तै हर के नाम की तुम ऊपर छाप जा त्रिखा मन तुझ आकर खै तै नानक हर हर अमृत बरख है भगत जिन्ना की वर्त नाम संत जिन्ना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साध कमात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान मंथन रंग रति रंग एक है नानक जन कै बिरत बिवेक है हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परे न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहीं बियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै मालक जीना हर तन जन कुआ प्रभु दीना हर हर जन कै ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बो करे नानक जन संकेते तरे पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लता नाम की महिमा संतरिद वसै संत प्रताप दुर्चव नसै संत का संग बड़ भागी पाई है संत की सेवा नाम त्याई है नाम तोल कछ अवरना होए नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडोल पूज सनाई हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सुब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया सगल त्याग बन मध्य फिरिया अनेक प्रकार की बहु जतना पुन दान हो में बहु रतना शरीर कटाय मैं कर राती वर्त नेम कर बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवै माँ उदास तपिसर थी वै अगन माए होमत प्राण कनिकसु है वर भूम दान न्यौली कर्म करै बहुआसन जैन मार्ग संयम साधन निमक निमक कर शरीर कटावै तौ भी हौ मैं मैल न जावै हर के नाम संसर कचनाए नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर ते छुटै गर्भ गुमान मन ते उठै सोच करै दिन सर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को साध न करै
मन ते कबहु न भिखिया टरै जल धूवै बहु देह नी सुत का होई काची पीत मन हर के नाम कि मैं मऊच नानक नाम उतरे पतत बहुमूच बहुत सियानप जम का पावे आपै निक जितन कर तृष्णा त्रापै भेख अनेक अग्नि बुझै कोट उपाव दर गै नहीं सीजै झूठ सनाही उपयाल मोह व्यापर पाया जाल अवर करतू सगली जम डानै गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जप दुख जाए नानक बोले सह सुभाए चार पदार्थ जी को मांगे साजना की सेवा लागे जी को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सुदगावे जी को अपनी शोभा लूरे सा संगी हों मैं चूरे जे को जन्म मरण ते डरे साजना की सरनी परे जिस जन को प्रभु दस प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान सा संग जा का मिटै बिमान आपस को जो जाने नीचा सो गणिये सब ते उच्चा जाका मन होय सगल किरीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पिक है सगल सुर साजना सुख दुख जन समदृष्टेता नानक पाप उन नहीं लिपा निर्धन को तन तेरो नाओ निथावे को नाओ तेरा थाओ निमाने को प्रभु तेरो मान सगल कटा को देव दान करन करावन हर स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जानू आपे अपन संगा प्रभराते तुमरे उष्ट तुम ते हुए नानक वर न जान सकोए सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करम सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सासन धर्म तमल हिरिया सगल उदम है उदम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस रसन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जी कट वसै हर नाम सलोक निर्गुण यार एनिया सुप्रभ सदा संभाल जिन किया तिस चीत रख नानक निभि नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल थे कवन दृष्टानी जिन तू सासवार सी गारिया गर्भ अगन में जिने वारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध भर जोबन भोजन सुख सूद बिरद पया उपर साख सैन मुख पयाओ बैठ पौ दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श ले हो तो नानक सी जय जय प्रसाद धार ऊपर सुख बसै सुख प्रात्मित बनता सुगसै जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पाव कमूला जे प्रसाद भोगै सबर सा सुख समग्री संग सात बसा दिने हस पाव करने तरसना तिस त्याग और संरचना ऐसे दुखमुड अंत व्यापे नानक काढ़ लेहो प्रव्यापे आदि अंत जो रखन हार तिस्यो प्रीत न करै गवार जाके सेवा नव निध पावै तस्य मूड़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर सदा हजूरे ताको वंदा जानत दूरे जाके टहल पावै दरगह मान तिसै विसारै मुग्ध जान सदा सदा यो भुलन हार नानक रखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग्रचै सा छोट झूठ संग मचै जो छिड़ना सो अस्थिर कर मानै जो होवन सो दूर पुरानै छोड़ जाए तिस का श्रम करै संग सहाय तिस पर हरै चंदन ले पुतारै तोहे गर्द प्रीत पसम संग होए अंध घूमै पस बिकरार नानक काट लेहु प्रभु दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक बचारा करै दिन रात बाहर भेख अंतर मल माया छुप सनाए कच करै छिपाया बाहर भेख अंतर मल माया छुप सनाही करै छप सनाही कच करै छिपाया बाहर ज्ञान ध्यान सुनार अंतर ब्या पहलू सुवान अंतर अग्न बाहर तन स्वाहा गल पात्र कैसे तरयताहा जाके अंतर बसै प्रव्याप नानक तेजन सह समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गह लिहो उड़ निभावै कहा बुझारत बुझै डोरा निस कहिए तू समझै पूरा कहा विष्ण पद गावै गुंग जतन करै तौ पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू हां उस गवन करतार करुणा में दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाय सुहावै न चीत जो बैराई ता सुप्रीत बलुआ के गृह पीथर बसै अनद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मन मने प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह होया जूत विहाने कई जन्म नानक राख लियो अपन कर करम तू ठाकुर तुम पै अरदास जीव पिंड सब तेरी रास तुम माद पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में सुख कनेरे
कोई न जाने तुमरा अंत उच्चे ते उच्चा भगवंत सगल समग्री तुमरा सूत्र तारी तुम ते हो स्वाग्याकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दा सदा कुर्बानी श्लोक देन हार प्रभ छोड़ कै लागे अनुसवाए नानक नसी जई बिना वह पत जाय अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावे एक बस कारण भी खोट गवावे एक भी ना दे दस भी हिर ले तव मूड़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर से ना ही चारा था को कीजे सद नमस्कारा जाके मन लागा पर मीठा सर्व सूखता हूँ मन उठा जी जने अपना हुक्म नाया सर्व थोक नानक दिन पाया अगंत साव अपनी दे रास खाद पीत बर तैन दुलास अपनी अमान कछ बहुर साव ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीता भी खोवे बहुर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस्ती से आ गहरा कै प्रभ की आज्ञा मन मत है उसते चौगुण करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनिक भांत माया के हेत सर पर होवत जानन एज फिर की छाया सो रंग लावे ओ बिन सह मन पुछतावे जो दिसे सो चलनहार लपट रहे होते अंध अंधार उबटाऊ स्यो जो लावे ने ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानका भले लाई मिथ्या तन धन कुटम सुभाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राजवन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अस्तु वस्त्रा मिथ्या रंग संगमाया पेख हस्ता मिथ्या त्रु मोह अभिमान मिथ्या सुपर कर्त गुमान अस्त्र भग साध की शरण नानक जप जप जीव हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्व को हिरे मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अन्न सुवाद मिथ्या चरण पर विकार कुतावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन्नी पर उपकारा मिथ्या बास लेच विकारा बिन बूझे मिथ्या सब पै सफल दे नानक हर हर नाम लय विरति सागत की आरजा साच बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुखावता के दुर्गंध बिन सिमरन दिन रहन वृथा विहाय मेघ बिना ज्यो केती जाय गोविंद भजन बिन वृथे सब काम ज्यो कृपन के निरार्थ धाम धन धन ते जंजी कट बस्यो हर नाओ नानक ताके बल बल जाओ रह तवर कछ अवर कमावत मनि प्रीत मुखो गंडलावत जानन हार प्रभु प्रवीण बाहर भेख न काहु पी न उपदेश आप न करे आवत जावत जन मैं मरे जिसके अंतर वसै निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम भानी तिन प्रभ जाता नानक कुंजन चरण पराता करुण बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया या पह मन या पह आप करत नबेरा किसै दूर जनावत किसै बजावत नेरा पाव सियान सगल ते रहत सब कचा नया तुम की रह जिस पावे तिसले लड़लाए थान तनंतरिया सुमाए सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरी श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अंग मेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद छत्ती अमृत काहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जे प्रसाद सुगंध तन लावह तिसको सिमरत परम गत पावह जे प्रसाद वसै सुख मंदर तिसै त्याय सुधा मन अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नान सदा त्याय त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसे त्याग कतवर लुभावै जे प्रसाद सुख से सोई जय मनाठ पैरता का जस गावी जय जे प्रसाद तू सब को मान मुक्ता को जस रसन बखान जे प्रसाद तुर रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जब दर गय मान पावै नानक पासे ती घर जावै जे प्रसाद अरु कंचन देही लिवला उदिस राम सुनेही जे प्रसाद रौला रहत मन सुख पावे हर हर जिस कहत जे प्रसाद तिर सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके जे प्रसाद तुझको न पहुँचाए मन साथ सा सिमरो प्रभु उचे जे प्रसाद पाए दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अपूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद सुहस्त सुवारी मन तिस प्रभ को कबू न बिसारी
ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਨੁੱਖ ਧਨਾ ਰਾਖ ਪ੍ਰੋਇ ਪ੍ਰਭੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾ ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਉੱਠਤ ਬੈਠ ਸਤਿ ਸਹਿ ਧਿਆਈ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਏ ਜੋ ਇਹ ਕਲ ਕਹਿ ਹਾਂ ਊਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੈ ਪੁੰਨ ਬਹੁਦਾਨ ਮਨ ਅਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸ ਕਾ ਧਿਆਨ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਹ ਸਾਹ ਚਿਤਾਰੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਰ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਰ ਨੀਕੀ ਜਾਤ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨੈ ਕਰਨ ਨਾਦ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਖੈ ਬਿਸਮਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿ ਜੇ ਬਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲਹਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵ ਹੈ ਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਵਰ ਕਤ ਲਾਗੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੁਤਾ ਕੋ ਜਾਪ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਤਿਸੈ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਸਾਚ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਸਿਵਰਾਚ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ ਆਪ ਗਾਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵਸੈ ਮਨ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਾਤੂ ਤਮ ਹੋਏ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਆਪੂ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨ ਹੂੰ ਲਾਇਆ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਲੱਗੈ ਹੈ ਹਰ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਛੂ ਨਹਾਥ ਸਲੋਕ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸੁਮੁਖਤਾ ਹੋਏ ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਧਕ ਸੰਗਮ ਖੂਜਲ ਹੋਤ ਸਾਧ ਸੰਗਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਬੁੱਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਬੇਰਾ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਏਕ ਉਪਰ ਜਤਨ ਸਾਧਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧਕ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਮਾਹੀ ਸਮਾਨੀ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਗੋਚਰ ਮਿਲੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਕਤੂ ਧਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮੀਤ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾਪੁਨੀਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸਿਓ ਨਹੀਂ ਬੈਰ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਬੀਗਾ ਪੈਰ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਨੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾਪ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਤਜੈ ਸਵਿਆਪ ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਸਾਧ ਵਡਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨਿਆਈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਕਭੂ ਧਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਸਤ ਗੋਚਰ ਲੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹਿ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਵਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮੂ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟਮ ਨਿਸਤਾਰੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰਦੇਵਾ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਲਾਇਨੂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨੂ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਾਮੂ ਨਾਨਕ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮੂ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛਕਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕਲੂਕਤ ਹਰੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਛੜਤ ਹਰ ਮੇਲਾ ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਦ ਵਸੈ ਨਾਨਕ ਉਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਮੰਤੇ ਵਿਸਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿੱਠਾ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘਟ ਘਟ ਡੀਠਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪੈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿੱਟੇ ਸਭ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ ਸਾਧਗੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨ ਜਾਣੈ ਜਿਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇ ਤਬ ਕਿਆਨੈ ਸਾਧਗੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ
साधु उपमा रही भरपूर, साधु शोभा का नाही अंत, साधु शोभा सदा बेअंत, साधु शोभा उचते उच्ची, साधु शोभा मूचते मूची, साधु शोभा साधु बने आई, नानक साधु प्रभ भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोई, अवर न पेखै किस बिन कोए, नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा नरलेप, जैसे जल में कमल लेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा नरदोक, जैसे सूर सर्व को शोक, ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान, जैसे राज रंक लकाउ लागे तुल्पवान, ब्रह्म ज्ञानी कह तीर जेक, ज्यो वसदा को खोद को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाऊ, नानक ज्यो पाव का सह स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रगास, जैसे तारू पर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा, मने अपना है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पे, नानक जिन प्रभ आप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना, तुम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एकु प्रयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार महा, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी श्रद्धा सजागत, ब्रह्म ज्ञानी अंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कह कर सुधा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी करह प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माही, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सुधा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाया दाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की कथ ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब पर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उतार है जो अंतरनाम, सर्व में पिख है भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानक हो पर सगुन निस्तार अष्टपदि, मिथ्या नाही रस न परस, मन में प्रीति निरंजन दर्श, पर त्ररूप न पिख है नेत्र, साध की ठहर संसंग हेत, कर न सुन काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुरु प्रसाद बिखिया पर हर मन की बासना, मन ते टरै इंद्रिय जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मजे को ऐसा परस, बैसन सो जिस ऊपर सुपर सन, बिशन की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हुए ने कर्म, जिस बैसन का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग्राचे, मन तने अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरह नाम जपावे, नानक वै सुनु परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनसे सगला परम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, सासुंग पापा मन को वै, तिस भगवती कीमत उत्तम हुए, भगवंत की टहल करे नितनीत, मन तने अर्पै विष्ण परीत, हर के चरण हृदय विसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन प्रबोध है, राम नाम आत्म है, सो दे राम नाम सारस पीवे,
उस पंडित का वदे जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो ना आवे, वेद प्राण सिमरत बूझे मूल, सुख में जाने स्थूल, चौवर न कुदे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवर न में जपे को नाम, जो जो जपे तिसकी गत होय, सास संग पावे जिनको, एकर कृपांतर उतारे, पस प्रेम पात्र को तारे, सर्व रूप का उखद नाम, कल्याण रो मंगल गुणगाम, काउ जुगत कितै न पाइये धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म, जिसका मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सतराम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास संतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दर गए परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जी परे, सगल संगातम उदास, ऐसी जुगत नानक राम दास, प्रभु की आज्ञा तुम हितावे, जीवन मुख सो कहावे, तैसा अर्घ तैसा सुख, सदानंद तै नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा मृत तैसी भी काटी, तैसा मान तैसा विमान, तैसा रंक तैसा राजा, जो वरता ईसाई जुगत, नानक पुर कहिए जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर रखे तैसा तिन्नाओ, आपे करण करावण जोग, प्रपावे सोई फन हो, पसुरंत तरंग लखे न जाय, पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता बिना, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहे निहाल, सलोक उस्तत करे अनेक जन, अंत न पारावार, नानक रचना प्रवरची, बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी, कई कोट होए पूजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थ वासी, कई कोट बन प्रमय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपी सरोते, कई कोट आत्म ध्यान तार है, कई कोट कव का विचार है, कई कोट नवत नाम त्यावे, नान करते कंथ न पावे, कई कोट अंध अज्ञान, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अपे गातम निकोर, कई कोट पर दर्व को हिर है, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया शर्माहे, कई कोट पर देश परमाहे, जित जित लावो तित तित लगना, नान करते की जान है करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पात्र वृक्ष निप जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूतार है, नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तार है, कई कोट राजस्थान सातक, कई कोट वेद प्राण सिमरत शास्त, कई कोट कीरतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जह किन्नर पिशाच, कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गा, सब ते नीर सब ते दूर, नानका पलित्रया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरख निवासी, कई कोट जन्मे जीवे मर है, कई कोट भोजोनी फिर है, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काल है तक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया में चिंत, जय जय भाणा तह तै राखे, नानक सब किस प्रभ कह हाथे, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संतिन लिवलागी, कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिनको मिलियो प्रभ विनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको हुए आप सुख प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट हुए अवतार, कई जुगत किन्नो विस्तार, कई बार पसरे उपासार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट किन्ने बपात, प्रभ ते हो ब्रह्मा समात, आकांत न जाने कोय, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन हो वता तम प्रगास, कई कोट तत के व्यक्ति सदा निहारे को नित्रे, कई कोट नाम रस पीवे, अमर भय सर सद ही जीव है, कई कोट नाम गुण गावे, आत्मरा सुख सह समावे, अपने जन को साथ साथ सुमारे,
नानक होए परमेश्वर के प्यारे। श्लोक करण कारण प्रभेक है दूसर नाही कोए, नान किस बलिहार न जल थन महियल सोए अष्टपदी। करण करावन करण है जोग जोत सुभावै, सोई हो किन में ताप तापन हार, अंत ने किस पार आवारा। हुक्मे धार धर रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार। कर कर देखै अपनी वडियाई, नानु समय रिया सुमाई। प्रभावै मानु गत पावै, प्रभावै तां पात्र तुरावै। प्रभावै बिन सास तेरा कै, प्रभावै तां हर गुण भाकै। प्रभावै तां पत्र दुधारै, आप करै अपन बिचारै। दोहां सिरां कै आप स्वामी, खेलै बिकसै अंतर जामी। जो पावै स्वीकार करावै, नानु दृष्टि अवर न आवै। कहो मानुख ते क्या हुए आवै, जो तिस पावै सोई करावै। इसके हाथ हुए तां सब किछ ले, जो तिस पावै सोई करे। अन जानत विख्या मैं रचै, जे जानत अपना बचै। भरमे भूला दै दिसतावै, निमक माए चार कुंड फिर आवै। कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन्ना मिले। किन मैं नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज। जाका दिस कछु न आवै, तिस तत्काल दै दिस प्रगटावै। जा को अपनी करै बख्शीस, ताका लेखा न गनै जगदीश। जीव पिंड सब तिस की रास, कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश। अपनी बनता बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई। इसका बनाही सहात, करण करावन सर्व को नाथ। आज्ञाकारी बपुरा जियो, जो तिस पावै सोई फुंथियो। कबू ऊंच नीच में बसै, कबू सोग हरख रंग हसै। कबू निंद चिंद व्यवहार, कबू बकाश पयाल। कबू बेता ब्रह्म विचार, नानका मिला बनहार। कबू नृत्य करै बहुपात, कबू सोए रह दिन रात। कबू मां क्रोध बिकराल, कबू सर्व की हो त्रिवाल। कबू होए बह बट राजा, कबू बेकारी नीच का साजा। कबू अपकीरत में आवै, कबू भला भला कहावै। ज्यो प्रभु राखै तिव ही रह, गुर प्रसाद नानक सच कह। कबू होए पंडित करे बख्यान, कबू मोहन धारी लावै ध्यान। कबू तट तीर्थ स्नान, कबू सिर साधक मुख्यान। कबू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन पर मैं परमिया। नाना रूप जो स्वागी दिखावै, जो प्रभावै तिवै नचावै। जो दिस पावै सोई होए, नानक दूजा वर न कोए। कबू सा संगत उपावै, उस स्थान ते बाहुर न आवै। अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मंत्र नाम रते एक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग। ज्यों जल में जलिया कटाना, त्यों ज्योति संग जो समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सत कुरबान। श्लोक सुखी बसै मिसकीनी, आया अपने वार तले बड़े बड़े अहंकारिया। नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसके अंतराज विमान। सो नरक पाती होवत स्वान, जो जाना मैं जो बनवंत। सो होवत विष्टा का जनता, उसको करवंत कहावै। जिन मरै बो जोन परमावै, धन भूम का जो करै गुमान। सो मूर कंदा ज्ञान कर कृपा, जिसके हृदय गरीबी बसावै। नानक यहाँ मुक्ता गै सुख पावै, धनवंता हे कर गर भावै। तिन समान का संग न जावै, बो नस्कर मानुक ऊपर करिया। पल पीतर ताका हुए बिना, सब ते आप जाने बलवंत। किन में हुए जाय पसमंत, किसे न बदे आप अहंकारी। धर्म राय तिस करे कुवारी, गुर प्रसाद जा का मिटे बिमान। सो जन नानक दरगह परवान, कोट कर्म करै हो तारी। श्रम पावै सगले बिरतारे, अनक तपस्या करे अहंकार। नक सुर फिर अवतार, अनेक जतन करा तुमने द्रवै। हर दरगह को कैसी गवै, आपस को जो भला कहावै। तिसे भलाई निकट न आवै, सर्व की रेंजा का मन होए। कहो नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कछ होए। तब इसको सुख नाही कोई, जब ए जाने मैं किछ करता। तब लग गर्भ जून मैं फिरता, जब तारे को बैरी मीत। तब लग नीचल नाही चीत, जब लग मुँह मगन संगमाए। तब लग धर्म राय देश जाए।

सब तेरू सबू पै संग बूझा देखे करै विवेक अपहे गपहे अनेक मरण बिनसै आवै न जाए नानक सधीरिया समाय आप ते से समझे आप आपे रचिया सब के साथ आप किनु आपन विस्तार सब कछु कहो करने हार उसते पिन कहो किछु होए तांत नंतर कै सोए अपने चलताप करने हार कौत कर रंग आपार मन में आप मन अपने माहि नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किन वख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मध्य किन बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप आ सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी काट काट सुनी श्रवण बख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्री श्लोक संत शरण जो जन पर सो जन उतरण हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार स्पदी संत कै दुख नारजा कटै संत कै दुखन जमते नी छुट्टै संत कै दुखन सुख सब जाय संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत होए मलिन संत कै दुखन शोभा तिहीन संत के हते गुर कह न कोई संत कै दुखन तान प्रस्ट होई संत कृपाल कृपा जी करै नानक संत संग निंदक पी तरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग जो लवै संतन कै दुखन सर्व जन पाए संत कै दुखन त्रिग जन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा में जलै संत कै दुखन सब को चलै संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीच निचाए संत दुखी कथा को नाए नानक संत पावै तो भीगत पाए संत कै निगमा अत ताए संत कै निंदक टिक न पाए संत का निंदक मा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखी अर दीन संत के निंदक सर्व रोग संत के निंदक को सदा विजोग संत के निंदा दुख में दुख नानक संत भाव है तो उसका पी हुए मोख संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसी का नहीं मित्र संत के दुखी को डान लाग गए संत के दुखी को सब त्याग गए संत का दुखी माँ अंकारी संत का दुखी सदा भिकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुख न सुख ते टरे संत के दुखी को ना ही ठाओ नान संत पावे तन ले मिलाए संत का दुखी अद बीच ते टूटे संत का दुखी कितै काज न पहुँचे संत का दुखी संत के दुखी को ध्यान फरमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंतर ते थोथा जो सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किचना है अपन बीजा पे ही खाए संत के दुखी गवर्नर रखन हार नान संत पावे तन ले उबार संत का दुखियों बिललाए ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे ज्यो पाव किंदर नहीं त्रापै संत का दुखी चिट्टे केला ज्यो बाढ़ तिलके तुम्हारे दोहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सुदमितिया कहत किरत निंद का तुर ही पया नानक ज्योतिष भाव है सोई थया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दर गय मिला सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी नम्र न जीवाई है संत के दुखी की पूजा न आशा संत का दुखी उठ चला निराशा संत के दुख न तुष्ट कोई जैसा भाव है तैसा कोई हुए पया कीर्तन मिठे कोई नानक जाने सच्चा सोए सब करते क्यों करने हार सुधा सुधा तिसको नमस्कार प्रभु की उस्तुत करो दिन रात सद्याहु सास के रास सब कुछ वर्त है जिसका किया जैसा करे तैसा कुछ ही अपना की लाभ करने हार दूसर कौन कह विचार जिष्णु कृपा करे ते सब नाम दे बड़ भागी नानक जन से श्लोक तजो सियान सुरजन हो सिमरहो हर हर राय एकास हर मन रखो नानक दुख परम पो जाय स्पदी मानु की टेक वृत्ति सब जान देवन कोई कह भगवान जिसके दिए रह अगाए बोर न तुष्ण ला कह आए मार रा कह कुआ मानु कह किचना ही आ जिसका भूस को जिसका नाम रखंड परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक विघन न लागे कोए उस्तद मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसनामृत पियो सदा सुहेला कर लह जियो नैनो पेख ठाकुर का रंग सासंग बिन सह सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिटै पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दर कै नान कूजल मथा बड़भागी ते जन जग माहि सदा सदार के गुण गाए राम नाम जो करै विचार से तनवंत गणी संसार मन तन मुख बोलै हर मुखी सदा सदा जान उत्ते सुखी एको एक एक पछाने तुतगी सोजी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नाम तिने निरंजन जानिया गुरु प्रसाद अपन आप सुजै तिसकी जानो तृष्णा बुझै

कहो किस हो, जब अविगत अगुचिर प्रवेका, तब चित्र गुपत किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगुचिर गादे, तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे।

जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन को मान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश, तह चल छिद्र लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग सुमावै, तह किसै भूख कवन तृप्तावै। करन करावन करने हार, नानक करते का नहीं सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कला तह परदीन, तह वेद कतेब कहा कोचीन। जब अपने आप आपुर तारे, तो सगन अपसगन कहा बिचारे। यह अपन ऊच अपने आप नीरा, तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। विषम मन विषम रहे विषमाद, नानक अपनी गत जानू आप। जह अचल अछेद भेद समाया, ऊहां किस है व्यापत माया। आपस को अपह आदेश, त्यो गुण का नाही प्रवेश। जह एक एक भगवंता, तह कौन चिंत किस लागै चिंता। जह अपन आप आप त्यारा, तह कौन कथै कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊच ते ऊचा, नानक आपस काओ आपह पहुंचा। जह आप रचियो परपंच कार, त्यो गुण में किन्नु विस्तार।

करी। आप कथे आप सुनने हार, आप है एक आप विस्तार। जात पावे ता सृष्टु पाए, अपने पाने ले समाए। तुम ते भिन्न नहीं किछ होए, आपन सूत सब जगत परोए। जाको प्रभ जीव आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत् का बेता, नानक सगल सृष्ट का जेता। जी जंत्र सबता कै हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राखै तिस कोय न मारै, सो मुआ जिस मनहु बिसारै। तिस तज अवर कहा को जाए, सब सिर एक निरंजन राय। जी की जुगत जाकै सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ।

अपन जसाप ही सुना। आवन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी किन्नी माया, सब कह मद लिप्त रह जो कुछ कहना सुआपे कह। आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे, ता ले समाइते हुए सुना ही बुरा। और ऐ कहो कि न कछ करा पला कर तू ततनी किया, पे जाने अपने जी किया सा सारी सब साथ। होत पोता अपन संग्राज था कि गत मित कहीं न जाए, दूसर हो सोजी पाए। तिसका किया सब परवान गुरु प्रसाद नानक हो जान, जो जाने तिस दा सुख होए। आप मिलाए लय प्रभ सोयो, धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुख जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जग तराया, जन आवन का यह सुहाव जन कह संग। चित आवै नाव आप मुक्त मुक्त करै संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जा का नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेक। सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे चिंद। आसन त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मांग। आप छोड़ बेनती करहो सास संगन सागर तरहो, हर तन के पर ले हो पंडार। नानक गुरु पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहजानंद। सास संग पज परमानंद, नरक निवार उदहारो जियो। गुण गोविंद अमृत रस पियो, चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का है दार। उत्तम श्लोक साध के वचन अमली कलाल, रतन सुनत कमावत होत उधार। आप तरह लोक कह निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग। जा कह मन लागा हर रंग, जय जय शब्द नाह दवा जय। सुन सुन अंध करे प्रभु का जय, प्रगटे गोपाल महंत के माते। नानक उदरे तिन कह साते, शरण जोग सुन शरण आए। कर कृपा प्रभु आप मिलाए, मिट गए बैर भय सब रेन। अमृत नाम साथ संग लैन, सुख प्रसन्न भय गुरुदेव। पूर्ण हुई सेव की सेव, आज जाल विकार ते रहते। राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रवतारी। नानक नबी के पमारी, प्रभ की उस्तत करो संत मीत। सावधान एकाग्र चीत, सुख मनी सहज गोविंद गुण नाम। जिस मन बसे सो होत निदान, सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए। प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए, सब त्यूज पाए स्थान। गौर न होवे आवन जान, हर तन काट चले जन सोए। नानक जिसे प्राप्त होए, खेम शांत रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध। विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान। चार पदार्थ कमल प्रगाश, सब कह मद सगल ते उदास। सुंदर चतुर तत् का बेता, समदर्शी एक दृष्टिता। हे फल तिस जन कह मुख भानी, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। एहो निदान जपै मन कोई, सब जुग में ताकी गत होए। गुण गोविंद नाम धुन बाणी, सिमृत शास्त्र वेद बखाणी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कह मन विश्राम। कोट अपरासा संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै। जा कह मस्त कर्म प्रपाए, सा सर नानक ते आए। जिस मन बसै सुन लाए फरीद, तिस जन आवै हर प्रभ ची। जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुर्लभ दे तत्काल उदारै। निर्मल शोभा अमृता की बानी, एक नाम मन वाहे समानी। दुख रोग बिन से पै भरम, साध नाम निर्मलता के कर्म। सब ते उच्चता की शोभा बनी, नानक के गुण नाम सुख मनी। सब ते उच्चता की शोभा बनी, नानक ए गुण नाम सुखमनी। सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा वाह।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सह सियाणपा लख होहे ता इक न चलै नाल किव सचियारा होइयै किव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाईया है इक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाईया है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हमै कहे ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने निशान गावै को गुण वड्याईया चार गावै को विद्या वेखम विचार गावै को साज करे तन खे गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी न आवै तोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विगसै वे प्रवाह साचा साहिब साच नाए भाखिया भाओ अपार आखै है मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखिया जित दिसै दरबार मोहों के बोलन बोलिया जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआर नानक एवै जानिया सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेवया तिन पाया मान नानक गावीऐ गुणी निधान गावीऐ सुनिऐ मन रखिऐ भाउ दुख पर हर सुख घर लै जाए गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हौ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सब न जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जे तिस भावा विण भाणे के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसोनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर न आवई ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोए करे सुना है सिद्ध पीर सुरनाथ सुना है धरत धवल आकाश सुना है दीप लो पाताल सुना है पोहे न सकै काल नानक भगत सदा विगास सुना है दुख पाप का नाश सुना है ईसर बर्मा इंद सुना है मुख सालाहन मंद सुना है जोग जुगत तन भेद सुना है शास्त सिमरत वेद नानक भगत सदा विगास सुना है दुख पाप का नाश सुना है सत संतोख ज्ञान सुना है अठ सठ का इशनान सुना है पढ़ पढ़ पावै मान सुना है लागै सहज ध्यान नानक भगत सदा विगास सुना है दुख पाप का नाश
सुनाए सारा गुणा के गाह, सुनाए सेख पीर पातशाह, सुनाए अंधे पावै राह, सुनाए हाथ होवै असगाह, नानक भगतां सदा विगास, सुनाए दुख पाप का नाश, मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पिछे पछुताए, कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मान कोए, मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की सुध, मन्ने मोहे चोटा न खाए, मन्ने जम कह साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मान कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पत स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से ती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मान कोए, मन्ने पावे मुख द्वार, मन्ने परवारे साधार, मन्ने तरे तारे गुर सिख, मन्ने नानक पवे न पेखो, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावह है दरगह मान, पंचा सोह दर राजान, पंचा का गुर एक त्यान, जे को कह करे विचार, करते कह करण नाही सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत, जे को बुझै होवै सचियार, तबले उपर केता पार, धरती होर परै होर होर, तिसते पार तलै कवन जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुढ़ी कलाम, एहो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए, केता तान सवाले हो रूप, केती दात जाने कौन कूत, कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ, कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह भख सार, असंख मोहन लिव लाए तार, कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूरख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सिर करहे पार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख काहे सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरा सिर संजोग वखाण, जिन ए लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमाए तिव तिव पाहे, जेता कीता तेता नाओ, विण ना वै नाही को थाओ, कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, भरिए हाथ पैर तन देह, पाणी धोतै उतर सुखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुण लइए ओ धोए, भरिए मत पापा कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग, पुन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख लै जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवहु जाहो, तीरथ तप दया दत दान, जे को पावै तिलका मान, सुनया मन्या मन कीता भाओ, अंतरगत तीरथ मल नहाओ,
ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਥ ਆਤ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾਉ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਉ। ਕਵਣ ਸੁਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁਤੀ ਮਾਹ ਕਵਣ, ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਖਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਣ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁਤ ਮਾਹ ਨਾ ਕੋਈ।

तीने पाप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको बिघन को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दास होई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आई है जस जठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध आवै ताए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, सब थाई होवो जी सहाय। दसाही पातशाहियां दी जागदी ज्योत, बाणी के बोहित नाम के जहाज, चवर ताकत शत्र दे मालक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ, दीदार दा ध्यान तरके वलो जी वाहिगुरु। पंजां प्यारियां, चौहां साहिबजादियां, चालियां मुक्तियां, हठियां जपियां तपियां, जिन्हां ने तेरा नाम जपया, वंड छकिया देख चलाई, तेग वाही देख के अंडिठ कीता, तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके वलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटवाए, खोपरियां लुहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चराए, गुरुद्वारे की सेवा ले कुर्बानियां कीतियां।

इन्हें कहा जी प्रवान कर लेंगे और समा कथा रहेगा जी। बहुत ही सत्कार गुरु घर के वजीर भाई साहब भाई परमजीत सिंह जी आप जी कथा राही निहाल कर रहे ने बड़े प्यार सत्कार के कथा सरों करने की कृपालता करनी। फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा।

नानक की प्रभ बेनती साध संग समाओ करहो कृपा करुणापते तेरे हर गुण गाओ नानक की प्रभ

रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप अपन किया कछु न होए जे सौ प्राणी लोचै कोय तिस बिन नाही तेरे किछ काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोहै प्रभ की जोत सगल घट सो है धनवंता होए क्या को गर्वै जा सब किछ तिसका दिया दरबै अत सूरा जे को कहावै प्रभ की कला बिना कहतावै जे को होए वह दातार तिस देन हार जाने गावार

गुरु का शब्द मन है अस्थम मन, ज्यों पाखाण नाव चढ़ तरै, प्राणी गुरु चरण लगत निस्तरै, ज्यों अंधकार दीपक परगास, गुर दर्शन देख मन हुए विगास, ज्यो महा उद्यान मह मार्ग पावै, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावै, तिन संतन की बांछो तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूर्ख काहे बिल लाइय, पूर्व लिखे का लिखिया पाइय, दुख सुख प्रभ देवनहार, अवर त्याग तू तिसै चतार, जो कछ करे सोई सुखमान, भूला काहे फिरे अजान, कौन बस्त आई तेरे संग, लपट रहो रस लोभी पतंग, राम नाम जब हृदय माहे, नानक पत सेती घर जाहे, जिस वखर कौ लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया, तज अभिमान लेहो मन मोल, राम नाम हृदय महतूल, लाद खेप संतह संचाल, अवर त्याग बिखिया जंजाल, धन धन कह सब कोय, मुख उजल हर दर गह सोय, इहो वापार विरला वापार है, नानक ताके सद बलिहार है, चरण साध के तुय तुय पियो, अर्प साध को अपना जियो, साध की तूर करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान, साध सेवा वड भागी पाइए, साध संग हर कीर्तन गाइए, अनिक बिगन ते साधु राखै, हर गुण गाय अमृत रस चाखै, ऊट गही संतह दर आया, सर्व सुख नानक तिह पाया, मृतक कौ जीवाल नहार, भूखे कौ देवत आधार, सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लहना पाहे, सब किछ तिसका उह करनै जोग, तिस बिन दूसर हुआ न होग, जप जन सदा सदा दिन रैनी, सब ते ऊच निर्मल इह करनी, कर किरपा जिसका नाम दिया, नानक सोजन निर्मल थिया, जा कै मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवै हर प्रभ चीत, भगत भगत सुनिए त्यो लोय, जा कै हृदय एको होय, सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सतमुख कहत, साची दृढ़ साचा आकार, सच वर्तै साचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता, सलोक रूप न रेख न रंग किछ, त्रिहु गुण ते प्रभ भिन्न, तिसहे बुझाए नानका, जिस होवै सो प्रसन्न, अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन महराख, मानुख की तू प्रीत त्याग, तिस्ते परै नाही किछ कोए, सर्ब निरंतर एको सोए, आपे बीना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद, कृपा निदान दयाल बख्शंद, साध तेरे की चरनी पाओ, नानक कै मन इहो अनुराओ, मनसा पूरन सरना जोग, जो कर पाया सोई होग, हरण भरन जाका नेत्र फूर, तिसका मंत्र न जानै होर, अनद रूप मंगल सद जाकै, सर्ब थोक सुनिय घर ताकै, राज महराज जोग मह जोगी, तप मह तपेशर गृहस्थ मह भोगी, त्याय त्याय भगत है सुख पाया, नानक तिस पुरख का किन अंत न पाया,
जाकी लीला की मितनाहे, सगल देव हारे अवगाहे, पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत, सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे, जन दास नाम त्या वह से, तिहु गुण मह जा कौ परमाए, जन्म मरे फिर आ वह जाए, ऊच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावै तैसा नानक जान, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना भेख करह इक रंग, नाना बिद किनो विस्थार, प्रभ विनाशी एकंकार, नाना चलत करे खिन माहे, पूरह पूर्ण सब ठाए, नाना बिद कर बणत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब घट तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवै नानक हर नाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवन, कर कृपा जिसे आपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सब माहे समानी, सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसह बुझाए तिसह सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जाके हृदय प्रवेश, सत निरत बूझै जे कोय, नाम जपतता की गत होय, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सृष करन हार, अवर न बूझ करत विचार, करते की मित न जाने किया, नानक जो तिस भावै सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म भय बिस्माद, जिन बूझिया तिसे आया स्वाद, प्रभ कै रंग राच जन रहे, गुर कै बचन पदार्थ लहे, वे दाते दुख काटन हार, जाके संग तरै संसार, जन का सेवक सो वड भागी, जन कै संग एक लिव लागी।

नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमक हर के गुण गाए अनिक राज भोग बड़े आई हर के नाम की कथा मन पाई बोह भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी शोभा धनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक परगास श्लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आपो आपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी।

भूवत प्रभ केवल धनी, तब बंद मुक्त कहो किस को घनी, जब एक हर अगम अपार, तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब शिव सकत कहो कित ठाए, जब आप है आप अपनी जोत तरे, तब कवन निडर कवन कत डरे, अपन चलताप करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार, अबनासी सुख अपन आसन, तह जन्म मरण कहो कहा बिनासन, जब पूरन करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए, जब अभिगत गुचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किच पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन गोचर गाते, तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे, अपन आप ही अचर जा, नानक अपन रूप आप ही उपर जा, जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता, जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन को मान कौन अभिमान, जह स्वरूप केवल जगदीश, तह चल छिद्र लगत कहो कीश, जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, तह किसे भूख कवन तृप्तावै, करन करावन करने हार, नानक करते का नहीं समार, जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई, जय सर्व कलाया पह प्रबीन, तह वेद कतेव कहा कोचीन, जब अपन आप आपुर तारै, तो सगन अप सगन कहा विचारै, जय अपन ऊच अपन आप नीरा, तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा, बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जान हो आप, जह अचल छेद अभेद सुमाया, ऊहा किसह व्यापत माया, आपस को आप है आदेश, त्यो गुण का नाही प्रवेश, जह कह एक एक भगवंता, तह कौन अचिंत किस लागे चिंता, जय अपन आपा पतियारा, तह कौन कथे कौन सुनने हारा, बहु बेअंत ऊच ते ऊचा, नानक आपस को आप पहुंचा, जय आप रचियो परपंच अकार, तेहु गुण मह कीनो विस्तार, पाप पुन ते पई कहावत, को नरक को स्वर्ग बंछावत, आल जाल माया जंजाल, होमे मोह परम पै पार, दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार कियो बखियान, अपन खेल आप कर देखै, खेल संकुचै तो नानक एकै, जह अभिगत भगत है आप, जह पसरै पासार संत प्रताप, दुहु पाकाया पे तनी, उनकी शोभा उन्हु बनी, आपह कौत करै आनंद चोज, आपह रस भोग निरजोग, जिस भावै तिस आपन नाई लावै, जिस भावै तिस खेल खिलावै।

नानक हे गुण नाम सुख मनी सब ते ऊचता की शोभा बनी नानक हे गुण नाम सुख मनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संग जी आप जी वडभागी हो गुरु चरणा विच बैठ के घरां विच बैठ के अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ नाल जुड़दे हो। सतगुरु जी कृपा करन पढ़ी सुनी बाणी दा भाव समूह संगतां नूं परिवारां नूं सतगुरु जी प्रदान करन दरों करों नामदान गुरसिखी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके गुरुदेव जी निवाजन अगाध बोध बाणी पढ़दियां होईयां बेअंत बेअंत फुल्लां दी खिमा प्यार सत फतेह गजाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

पानी नाल बड़ा संबंध है मछली दा। सतगुरु दे बचना ते गौर करना, एडा संबंध है, एडा गूढ़ा संबंध है। जे पानी नहीं है ते मौत स्वीकार, तड़प तड़प के उन्हें मर जाना। सतगुरु सानू समझाउणा कर रहे हैं, कहते ने तेरी अवस्था गुरु तो बिना किवें बनेगी। इहो जी प्रीत पा सकन गुरु नाल, इहो जिहा इश्क गुरु नाल कर सकते हैं, मोहब्बत हो सकती है। ये मोहब्बत ही तेसी सत्संग होर की सी। खोपरियां लै गई, बंद बंद कटे गए, उबलदियां देकां विच उबल गए। ये मोहब्बत सी, इश्क सी, दृढ़ता सी, फेत सी। आर्यां नाल शरीर दे दो दो फाड़ हो जाते हैं, यदि आरंभता तत्ती तवियां ते बैठ के ही शुरू हो गई। गुरु ने ही ते सिखाउणा सानू, यही ते सिखाया कि वेख सिदक विच किवें रहना है, भरोसे विच किवें रहना है। चमड़ी है ना, जांदी है ते जावे, पर अंदर जेड़ा बैठा है बाणी बाणी प्रभ की, सबको बोले सारे आखो आप अडोल न कबहूं। उन्हें डोलन देना, शरीर जांदा ते चला जाए, शरीर ते बहुत चले गए। गुरु तेग बहादुर साहब जी दी शहीदी वो भी बीत गई। सतगुरु दे फरजंद रोज सुन दे आ रहे हैं, कितनी प्रीत होवेगी, कितना इश्क होवेगा गुरु नाल, कितनी मोहब्बत होवेगी। कि सूबा भी हैरान हो गया सी, इन्होंने उम्र ते बड़िया छोटिया ने पर जज्बा बहुत है। बस गल इन किसी सात संगत शब्द सारे मिलके पढ़िए, ते ये अरदास भी करिए कि सच्चे पातशाह ये सिदक ते भरोसा इत्थे भी आ जाए। फिर ते साडे ये शहीदी सगम समागम मनाए सफले ने, मनाउंदे ते हर साल ही है, पर किन्ने क जीव होणगे, किन्नियां क ओ आत्मावां होणगियां, किन्ने क हिरदे होणगे जिन्हां नूं सट वज्जी होवेगी, दिल तड़पिया होवेगा। सतगुरु दा वचन हैन विरले ना ही कणे, वो कोई विरले ही हुंदे ने। मैं ते सुनिया है कई जगह इन्हां दिनां विच इस समय विच लोकां ने आसन भी पुंजे ही लाए हुंदे ने। वो आसन पुंजे इस करके लगता भी नहीं पलंग ते नहीं सौना, ध्यान सारा साहबजादियां वल है, ध्यान सारा मात गुजर वल है।
ਉਹ ਸਮਾਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਤਸੰਗ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਈਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੋਲਦੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਥੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਰੈਗੂਲਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਸਾਡੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੈਸੀ ਮਛਲੀ ਨੀਲ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਪੀ ਨਾ ਪੀ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਮਨ ਐਸਾ ਨਿਹੋਂ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਆਓ ਪੜੀਏ ਸਾਰੇ।